लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यो मौला, अलिप्त रहो जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यो करता, जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत में बहुत बियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

बहुत भागशी लोकां दी जिंदगी दे विच ही हुंदा है। असी अपनी रोज दी जिंदगी सवेरे उठण तों जदों साडी अख खुलदी है उस तों लैके रात नूं जदों असी बिस्तर दे विच

नींद दे विच प्रवेश करने तो पहला हर रोज साड़ी जिंदगी दे विच जितने सानू एक्सपीरियंसेस होंदे हैं वो तकरीबन तकरीबन हरेक मनुख दे मोर और लेस समान ही हैं। असी खाने हाँ, असी पीने हाँ, फिर उस तो बाद असी अपने कारोबार दे विच प्रवेश करते हैं। कारोबार दी

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। भाव उन्होंने कहने का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी नूं लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंदी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लई एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी नूं एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना। कहते हैं

ग्यारह श्लोक है। अगर असी एक बाणी मंत्र हन, अज ही मैं सवेरे एक लाइन पढ़ रहा सी, गुरु साहब कहते सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी, कहते हैं कि तेरी बाणी ही असल अमृत असल मंत्र है। तो इतने हजूर ये कहते हैं कि विखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। उदास लफज का जो इस दे पिछे जो कोनोटेशन है उसनों असी थोड़ा जा ध्यान दे नाल समझिए। असी उदासी तो मतलब समझते हैं डिप्रेशन, गम, जिसनों असी बड़ी नैगेटिव सेंस दे विच लेने। लेकिन गुरबाणी जदों उदास लफ्ज आता है तो इस दे जो भाव हैं इस दे अर्थ हैं वो टोटली अलग हैं। हुण असी उदास लफ्ज नूं किस तरह समझिए। एक है जो साड़ी जिंदगी दे विच डिप्रेशन आता है, असी बड़े अंदरों एंगजाइटी दे नाल फ्रस्ट्रेशन दे नाल जदों कमजोर हो जाने हाँ उदों भी साड़ी जिंदगी च उदासी आती है। लेकिन गुरबाणी उस उदासी की गल नहीं करती। गुरबाणी किस उदासी की गल करती है उसनों असी इस तरह समझिए कि जदों जिस चीज दे विच साड़ी रुचि होवे ओ सानू ना मिले तो फिर की होंदा है, साडे अंदर एक तोटा एक काल एक थुड़ महसूस होंदी है। अते जिस चीज दे वास्ते साडी रुचि होवे अगर ओ सानू मिल जाए तो सानू एक खिड़ाव महसूस होंदा है, एक ताजगी मिलती है। गुरु साहब उदासी की गल जो करते हैं तो भगत की जिंदगी की एक उदाहरण लैके गल करते हैं कि भगत की जिंदगी दे विच रब दे नाल अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाल प्यार हुंदा है। उस दी रूह की खुराक सत्संग हुंदा है, उस दी आत्मा की भुख पूरी हुंदी है जदों उसनू गुरबाणी गुरबाणी पढ़ने वालों की संगत गुरबाणी दे विचार अते साध संगत का माहौल मिले। जदों उसनू ये नहीं मिलता तो उस दे जीवन दे विच एक उदासी आती है, एक उपरामता आती है। लेकिन गुरु साहब कहते हैं इंसान तुसी हमेशा इन्हां चीजां दे विच ही उलझे रहिंदे हो, फसे रहिंदे हो, खोए रहिंदे हो, तुसी इन्हां दे विचों कदे उपराम ही नहीं होंदे। भाव के तुसी कदे अकदे ही नहीं हो, कदे रचदे ही नहीं हो, तुहाडी रुचि जो है इन्हां चीजां दे विचों कदे निकलती ही नहीं है। कहते हैं विखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहते निमख भरदे वास्ते भी पल भरदे वास्ते भी तुसी इन्हां नूं छड्डना नहीं चाह रहे, इतनी ज्यादा इन्हां दे विच तुहाडी जिंदगी उलझ चुकी है। निमख ना होए उदास कौ नानक हर भजमना परे ना जमकी फास। लेकिन जदों गुरु साहब साडी जिंदगी का मुआयना करते हैं, साडी जिंदगी का जदों एनालिसिस करते हैं तो उन्होंने साडे मुतलक अजिहे बाणी च शब्द कहे हैं, मैं आप जी के सामने सुनाना। कहते हैं काम क्रोध विख भूख प्यासा आ साडे पले। काम क्रोध विख भूख प्यासा जो दिसे सो आस निराशा नानक बिरले मिले उदासा। कहते हैं बिरले ही ऐसे सज्जन कोई मिलते हैं जिन्हां दे चित उदास हैं, पाप जिन्हां दे चित इन्हां तमाम दुनिया दे झमेलियां तो उच्चे उठ के कुछ होर लभदे हैं। कहते हैं अजिहे सज्जन बहुत बिरले ही मिलते हैं। कबीर साहब उदास हैं, मैं पिछले कीर्तन दे विच एक प्रमाण दिता सी, असी उदास नहीं हैं। उदास का भाव जदों इन्हां चीजां च चित ना लगे, जदों आत्मा कुछ होर चाहे, जदों अंदर कुछ होर लगता होवे, जदों खाने च भी रूह ना रह जाए, पहनन च भी रूह ना रह जाए, दुनियावी मल्ला मारन च भी रूह ना रह जाए, जदों चित कुछ होर लभे उसनू कहिंदे हन उदासी। साडी अवस्था अजिही नहीं है, कबीर साहब भी है। कबीर साहब कहिंदे हन

मैं सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस दे विचों को सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों को तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस दे विचों कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी, केस जरे जो कास, ये जग जरता देख के पयो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित करे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लगता, तेरा चित कदे अजिही चीज में नहीं लगता जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन्हां चीजां नूं लगता रहना है जिहड़ियां ने बिनसी जाना है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान के पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार में कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआ की नजर के विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इना तमाम दुनिया के खाणियां दे नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असी ये सुनदियां सुनदियां अंदर ये देखना है कि साडी रुचि बदली है या नहीं बदली। असी अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असी जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म की साडी रुचि है, अते जिस किस्म की रुचि हुंदी है उसे किस्म का इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनू सुनो।

पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़ भरिए साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़िए खात, पड़िए जेते वर्ष।

नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चल चलो मार्ग गोविंद मिटे पार।

0: मेरी प्रीत तो बिरद सो
1: आप आखिरी दुख जोड़ी जीवे जुगतार ते हारी कोई रसना खाली ना लो।

0: क्योंकि यार रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदर हाँ मैं पानी बन के खाधानी बाहर नहीं है जाती रो रो के हरा फुल जोगिया की कहीं मैं महाराज मैं भूल गया हजूर कहने लगे जोगिया भूल गए आस के पाचा हजूर कहने लगे बख्तिया खुशी भाई क्योंकि जोगा बख्शिया गया तुम्हें भी बख्शे गए आप सारे बख्शे गए प्यार न आखो धन श्री गुरु गोविंद सिंह ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व को सूरी चढ़ता है उन्हें फिर नहीं देखना है मैरी जगह है जा चंगी है गंदी मंदी था सूरी रोशनी देता है गुरु की मेर हर थान से जाती अज थोड़े उत्ते भी पता है गुरु थानू भी दाता मिली जोगा बख्शिया गया पर भाई जोगा से ने कहा महाराज एक शंका छोटा जहा रह गया अदूर कहने लगे बार कद महाराज वेसवा दे चवारे
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

नौ पर धाते शब्द थे आये छोटो दुनी परिता लागे प्रीत सुजान से परते लोग अजा

मन इच्छे से फल पाए करते आप करते आप साया सर्व सुख पाया पुत पाई सिद्ध पुत पाई सिद्ध।

दाता तरफ महत दिवस रात को जाए दया खिले आईया बुरे आईया वाचे तरब दूर करनी आपो आपने जिन नाम ते आया कैम शक्त कार नानक प्रेम क्यों दिले नानक प्रेम क्यों दिले